0: सारी बन गई।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां।
6: It's commercial time.
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए।
6: You are listening to 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ये नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats. Wow,
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
15: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

You are listening 97.1 FM.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

तन्हाइयों में जाने दे। अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car.
4: It's commercial time.
5: Ohana, kai ke khushbu, gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
6: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
5: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा. जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी.
5: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
5: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का.
7: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है.
5: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी.
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें.
8: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816, एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड, लेंटन नॉटिंघम, NG72ET.
7: Pishavri Dera.
9: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
8: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे.
10: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
11: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
12: हजार 97.1 एफएम.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन.
13: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम को देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें बातों ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड एक्साइटिंग मॉर्निंग सभी सुनने वाले लिसनर्स को। सो हैप्पी मंडे टू ऑल माय वंडरफुल लिसनर्स, रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आप सभी की होस्ट, वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। सी तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को है मालूम कि रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज। सो जो पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चले हम और आप अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। सो पूरी कोशिश होगी कि मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा मीनिंगफुल। लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो दिन है बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत और साथ ही साथ हो आपकी और मेरी कुछ कम्युनिकेशन, सो उसके लिए आपको डायल करना होगा 01157100971। सो ये है हमारा रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब के स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर आज के दिन के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं, या फिर किसी भी किस्म की कोई उलझन जो कर रही है आपको डिस्टर्ब, सो आप फौरी तौर पर हमसे शेयर कर सकते हैं किस तरह से इस नंबर के थ्रू। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk इट्स द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आवर रेडियो स्टेशन, सो आप इस वेबसाइट के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप रेडियो फजा 97.1 एफएम की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे

Fuga. सो सिंपली आपको करना कुछ यूँ होगा कि आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फज़ा 97.1 FM। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी यानी रेडियो फज़ा 97.1 FM की एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को कर लीजिए इंस्टॉल, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने एक एक करके सभी आपसे शेयर कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और किस तरह से आप रेडियो फज़ा 97.1 FM की फैमिली का हिस्सा बनते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का वीकेंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गुजरा होगा और आप सब इस वक्त एक एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक मूड में होंगे। आह, मंडे एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही अक्सर लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। सुबह का अलार्म बजना, बिस्तर से निकलना, सुस्ती को छोड़ना, मंडे ब्लूज का शिकार हो जाना, ये हम सब के साथ होता है। और समटाइम्स दिल करता है कि क्यों ना काश मंडे की जगह एक बार फिर से संडे रिपीट हो जाए। लेकिन रुकिए, आज हम मंडे को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो अपनी चाय या फिर कॉफी का सिप लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा शो। सो बेसिकली क्या होता है कि अक्सर लोग मंडे से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आराम सुकून खत्म हो गया है। लेकिन सोचिए तो सही, मंडे एक्चुअली क्या होता है? सो बेसिकली मंडे इज अ रिच फ्रेश स्टार्ट, इट्स अ क्लीन विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सो मंडे एक नई शुरुआत है, ये एक बिल्कुल साफ ब्लैंक पेज की तरह होता है जहां आप अपनी मर्जी से अपनी कहानी को एक नए ताविये से शुरू कर सकते हैं। सो ये बात कितनी ही ज़्यादा गहरी है, पिछले हफ्ते अगर कोई काम खराब हुआ है, अगर कोई गोल हमसे मिस हो चुका है या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो हम नहीं करना चाहते थे या हम चाहते थे कि हम अपने सम टास्क को कंप्लीट कर लें जो कि नहीं हो सके, सो फाइनली अगेन आ चुका है मंडे। सो ये मंडे हमारे लिए लेकर आता है एक चांस, एक नया दिन, एक नया हफ्ता और एक नया मौका। सो इस एक नए मौके का उठाएंगे ज़रूर भरपूर फ़ायदा। सो बेसिकली मंडे आपको एक नया मौका देता है कि आप दोबारा से शुरुआत करें। इस दिन को बोझ मत समझिए बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। सो मंडे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आपको नए नए रास्ते मिलते हैं, न्यू इमेजिनेशंस मिलती हैं एंड देन आप सोचते हो कि अच्छा चलो ठीक है, जो होना था सो हो चुका, अब वापस से एक नया मौका है कि किस तरह से हमने जो टास्क पिछले वीक कंप्लीट नहीं किए थे उनको किस तरह से इस वीक कंप्लीट किया जाए। सो बेसिकली अक्सर कहा जाता है कि योर मंडे मॉर्निंग थॉट्स सेट द टोन फॉर योर होल वीक, सी योर सेल्फ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड लिविंग अ फुलफिलिंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो बेसिकली मंडे की सुबह आपकी जो सोच होती है वही सोच आपको पूरे हफ्ते का मूड तैयार करने में मदद देती है। सो बेसिकली मंडे को जो आप सोचते हैं वो आपको मजबूत करता है, आपको कामयाब बनाता है और ज़िंदगी की तरफ रवान दवा करता है। वाह, कितनी गहरी बात है ना, हमारा माइंड एक बिल्कुल गार्डन की तरह है। अगर आप मंडे की सुबह ये सोचते रहेंगे कि उफ फिर से काम करना पड़ेगा, कितना मुश्किल दिन है, तो आपका जो पूरा हफ्ता होगा वो कुछ इसी तरह से लेजी लेजी और थका थका होगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खुद से ये कहेंगे कि आज का दिन मेरा है, सो आज मैं नए चैलेंजेस
فیس کروں گا اور

अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेके जाऊंगा, जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा। सो तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तभी आपका ये जो पूरा वीक है ये बन जाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। सो नाउ हमने मंडे को किस तरह से देखना है, हमने देखना है मंडे को एक नई, एक फ्रेश और एक एनर्जेटिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर।

लिसनर्स, अभी आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि बिस्तर को छोड़ देना है और इस खूबसूरत से मंडे को वेलकम करना है। सो इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एंड देन करेंगे बहुत सारी मजे मजे की बातें। सो उन सभी बातों के लिए जरूरी है कि फिलहाल कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ा जाए। सो जी बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैग के संग जुड़े रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
5: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें मंडे को बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि मंडे होता है एक ऐसा दिन जहां आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से। सो आई फील लाइक कि इन बातों से हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने अभी तक अपना मंडे स्टार्ट कर लिया होगा। वेल, अगर अभी तक आपने अपने इस दिन को शुरू नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज। सो आई फील लाइक कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स बिस्तर छोड़ चुके होंगे और अपने ऑफिसेज की तरफ रवाना दवा हो चुके होंगे। सो वो सभी लिसनर जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते हमें ट्यून करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनको कोई अच्छी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिले या फिर उनकी डेस्टिनेशन बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, सो डोंट वरी, आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो फजा डैप के थ्रू आप और हम संग संग, यानी कि आप और हम साथ साथ रहेंगे और मिलकर बनाएंगे आपके सफ़र को, डेस्टिनेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत। सो साथ ही साथ इतना कहती चलती हूँ कि अगर जस्ट इन केस अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते मुझे सुन रहे हैं, सो बी केयरफुल। सबसे पहले आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपकी ड्राइविंग के ऊपर क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, तो इस तरह के बिल्कुल भी स्टंट्स नहीं करने के जिनसे आपकी ज़िंदगी आ जाए खतरे में। साथ ही साथ 01157100971 है आपका और मेरा रابطے का नंबर। सो इस नंबर पर जाके जल्दी से मुझे बताइए कि आप इस वक्त दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप मुझे क्या करते करते सुन रहे हैं। सो जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं जिस तरह कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ किस तरह से होता है एक अच्छे हेल्दी मील के साथ। सो इसी तरह से आपकी बॉडी को ज़रूरत है एक अच्छे हेल्दी मील की ताकि आपको एनर्जी मिले, इसी तरह से आपके माइंड को ज़रूरत है थोड़ी सी रिफ्रेशिंग वाइब्स की। सो जी, आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ये ट्रैक वन ऑफ माई फेवरेट गानों में से है, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं आज अपनी फेवरेटी से। वेल, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है और अगर आप चाहते हैं कि वो गाना शो में प्ले किया जाए सो क्यों नहीं, वाई नॉट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM में तमाम तर वही गाने शामिल किए जाते हैं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद होते हैं। सो आप भी मुझे बता सकते हैं। वेल, जब तक आप मुझे बताते हैं तब तक के लिए हम सुनते हैं मेरा पसंदीदा ट्रैक। सो जी, होती है आप सभी से मुलाकात ट्रैक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

See the listeners, kaisa laga aapko ye khoobsurat sa track? Basically it's one of my favorite songs kyunki ye gana associate kiya jata hai Maxton Hall se. So Maxton Hall jo series hai, वैसे तो मैंने वो last summer vacations में देखी थी, तो it's been a whole year. लेकिन जब भी कहीं मैं Maxton Hall से जुड़ी कोई भी रील देखती हूँ या कोई पोस्टर या समथिंग एल्स, तो सबसे पहले यही गाना मेरे माइंड में आता है. सो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने इस सीरीज़ का पार्ट वन देख लिया था एंड देन पार्ट टू नहीं देख सकी. सो आजकल मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मेरे पास कुछ फ्री टाइम है तो क्यों ना इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए. सो उसके चलते चलते मैंने सोचा कि क्यों ना जहाँ मैं ये सीरीज़ और ये गाना सुन रही हूँ तो अपने लिसनर के साथ भी इसको शेयर किया जाए. वेल, आप भी अपना पसंदीदा गाना शो में शामिल करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अच्छा सा गाना या आप कोई अच्छा सा गाना अपने किसी प्यारे चाहने वाले को डेडिकेट करें, सो आप उसके लिए भी सिंपली हमें बता सकते हैं. अच्छा, तो मुझे बताइए लिसनर्स, कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस सीरीज़ को देखा है. सो आप सभी के ख्याल में Maxton Hall में रूबी का करेक्टर ज़्यादा अच्छा है या फिर जेम्स का? सो जहाँ तक मैंने देखा है सीज़न वन, सो उतने में तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा है कि जेम्स इज़ अ गुड गाय, बट सम हाउ ड्यू टू द सिचुएशन वो चीज़ों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. लेकिन itself it's really a nice actor, plus acting बहुत अच्छी थी और story plot अच्छा था. लेकिन एक चीज़ जो मुझे series में थोड़ी ही सी ज़्यादा outdated लगी वो ये कि it's 2026, तो आजकल के दौर में everybody has their own freedom. So series में दिखाया जा रहा है कि जो main characters हैं उनके पास इतनी freedom नहीं है कि वो अपनी life के decisions खुद कर सके. So ये चीज़ मुझे थोड़ी सी off लगी कि आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है. आजकल तो सभी अपने डिसीजंस खुद लेते हैं. इवेंचुअली आजकल के बच्चे भी यही चाहते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद लें. और जितना मैंने देखा है तो आजकल जैसे कि हम अभी यूके में रहते हैं, सो हमारे पेरेंट्स हमें इतना फ्रीडम देते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें. सो इस सीरीज़ की ये चीज़ मुझे थोड़ी सी आउटडेटेड लगी. बाकी ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, कमाल है, स्टोरी अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, एंड देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें इस सीरीज़ को. और अभी मेरा एक सीज़न रहता है, सो मैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मैं आपसे शेयर करूँ कि सीज़न वन की तरह क्या सीज़न टू भी वर्थ इट है या नहीं. वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही हमें आई है एक अदद सॉन्ग रिकमेंडेशन. सो हमारी एक लिसनर है जो चाहती हैं कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए, तो क्यों नहीं, ज़रूर हम ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम शो में वही गाने चलाएं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद हैं. सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक.

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वैसे अभी जब मैं ये ट्रैक सर्च कर रही थी तो आई रियलाइज के ये तो सेलेना गोमेज का बहुत ही ज़्यादा पुराना गाना है। वेल, बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो अभी भी स्टिल इतने पुराने गाने सुनते हैं। वैसे किसी ने कहा था कि ओल्ड इज़ गोल्ड, सो पुराने गाने बहुत अच्छे होते हैं। वेल, आजकल के गाने भी अच्छे होते हैं, लेकिन somehow जो पुराने गानों की वाइब्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। सॉरी, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? इस तरह के मज़ीद और भी अच्छे अच्छे ट्रैक्स हमें रिकमेंड करते रहिए ताकि हम उस वो अपने शो का हिस्सा बनाएं। चलिए तो लिसनर्स, अब बारी आती है हमारे शो यानी कि टीवी डायलॉग के उस सेगमेंट को स्टार्ट करने की, जो कि मेरा, आपका, बल्कि हम सभी का फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि हम बात करते हैं इस सेगमेंट में पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम हर आने वाले नए दिन के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। सो जी, हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेटिंग से कोट, जो कि ना सिर्फ आपके दिन को बल्कि पूरी कोशिश तो यही है कि आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देंगे और कोई ना कोई मुस्बत असरात मरतब करेंगे। सो रियल इसने स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट कोट। सो आपने देखा होगा कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई भी न्यू स्टेप उठाते हैं तो सबसे पहले लोग हम पर तनकीद करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और भी इसी तरह के बहुत सारे जुमले होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी बात पर एक बहुत ही फेमस ऑथर का ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग सा कोट है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप में हम सभी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि क्यों ना किसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को अ लिटिल बिट बेहतर बनाएं। सो फिर ये जो लोगों की बहुत ज़्यादा तनकीद होती है वो हमें इतना डिमोटिवेट कर देती है कि हम फिर थक जाते हैं और एक तो दिन में ही बस कर देते हैं, और हम खुद को ये यकीन दिलाने लगते हैं कि अच्छा, अगर सब कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई ना कोई दम तो होगा, शायद वाकई हमसे ये काम नहीं हो सकता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई काम आप मेहनत से, लगन से, दिल लगा के करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मुश्किल है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोट। सो अवर फर्स्ट कोट सेज, इनक्रेडिबल चेंज हैपेंस इन योर लाइफ व्हेन यू डिसाइड टू टेक कंट्रोल ऑफ व्हाट यू हैव पावर ओवर इंस्टेड ऑफ क्रेविंग कंट्रोल ओवर व्हाट यू डोंट। सो इसे कोट में इतनी गहरी बात छुपी हुई है कि अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तभी आपको रियलाइज़ होगा। सो आपकी ज़िंदगी में एक हैरतअंगेज़ तब्दीली तभी आती है जब आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं जो आपके हाथ में हैं, बजाय उन चीज़ों के पीछे भागने के जो आपके इख्तियार में बिल्कुल नहीं। सो लिसनर्स, जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। माई लवली लिसनर्स, हम अपनी ज़िंदगी का 80% वक्त और एनर्जी उन चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं। हम इस बात पर परेशान होते रहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है,

सो बेसिकली हम इस बात की वजह से परेशान होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और साथ ही साथ हम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा अगर हम ये काम करेंगे तो सोसाइटी हमें किस तरह से देखेगी। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, वो काम उनको पसंद होते हैं, पर वो इस वजह से नहीं करते कि उनके आसपास के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी उनको किस तरह से परसीव करेगी। सो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। सो आपने क्या करना है, ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम तर चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं जस्ट उनको कंट्रोल करें, और जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं उन पर ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें। क्योंकि द रियल थिंग इज आप लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कल क्या होने वाला है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप आज क्या कर सकते हैं, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि आप खुद से ही अपने फ्यूचर को अच्छा बेहतर इम्प्रूव बना सकें। सो जब आप लोगों के तानों से या फिर तनकीद से तंग आ जाएं तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ और इग्नोर करें इधर उधर की बातों को, तभी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, अच्छी बन सकती है। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट, एंड आई होप कि आप सभी को ये कोट काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड समहाउ अगर आप आराम से सुकून से इत्मीनान से इसके बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई आपने अपनी ज़िंदगी में जो इतनी सारी एनर्जी इन तमाम तर चीज़ों को सोचने में वेस्ट कर दी वो सब बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। सो इसी तरह से अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपना टाइम और डोमेन उसी चीज़ को दें जो कि वाकई ही उसके काबिल है। लिसनर्स, इसी के साथ ही मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, सो आई फील लाइक कि आप सभी से पूछ लिया जाए। सो द क्वेश्चन इज कि समहाउ जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां आपकी क्लोज बंद ही आपको बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है उनकी वजह से, तो आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। सो जस्ट टेल अस 01157100971 जो कि है हमारे स्टूडियो का नंबर, आप इस नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हैं अपनी ज़िंदगी का लाइव एक्सपीरियंस। वैसे भी कहा जाता है कि डिफरेंट लोगों से बातचीत करने से हमें डिफरेंट तरह के ओपिनियंस मिलते हैं, और समहाउ हम भी, जैसे कि मैं भी अपनी ज़िंदगी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो उसके लिए अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर किया करें। सो जी लिसनर्स, ये था आज का फर्स्ट कोट, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कोट की जानिब, लेकिन उससे पहले अभी शो में वक्त हुआ है एक अतत कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए हमें जाना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर ही हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ मज़े मज़े के गाने भी शो में शामिल करेंगे, ऐसे गाने जो आप सुनना चाहते हैं। सो फिलहाल के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की, आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े
3: पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़नम फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवी डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेटिंग सा कोट, सो वेल काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग बातें तो हो ही रही हैं, सो क्यों ना माहौल को किया जाए थोड़ा सा चेंज। सो जी फिलहाल के लिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। सो ये गाना फिलहाल हमें हमारे एक नए लिसनर ने रिकमेंड किया है, सो क्यों नहीं उनके लिए यह गाना ज़रूर प्ले करेंगे। सो द सॉन्ग नेम इज़ समर टाइम सैडनेस। अब आई डोंट नो इनको कौन सी समर टाइम सैडनेस है, लेकिन फिर भी हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम वही गाने शो में शामिल करें जो कि हमारी सब गर्लीज को पसंद हो। सो सुनते हैं ये ट्रैक एंड देन स्टार्ट करते हैं सेकेंड मोटिवेटिंग कोट।

लिसनर, समर टाइम सैडनेस तो हो चुकी है खत्म, अब जरा चलते हैं आज के दूसरे कोट की जानिब। तो ये कोट उन सभी लिसनर्स के लिए है जो एक खूबसूरत से पैगाम या फिर मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उनका वक्त अभी तक नहीं आया। सो बेसिकली द कोट इज ऑल अबाउट दोज पीपल्स जो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं बट समहाउ उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें उनकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा, या फिर जो भी वो पोटेंशियल पुट कर रहे हैं उन्हें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। So my lovely divas, listen to these beautiful lines carefully. So our second quote says, trees that are slow to grow bear the best fruit. So कितनी खूबसूरत सी बात है कि हमारा कोट ये कहता है कि जो दरख्त आहिस्ता से ग्रो करते हैं वही सबसे ज़्यादा जानदार और सबसे ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। सो हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज हम जो भी कुछ करें उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट हमें आज ही मिल जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये चाहते हैं कि हम काम इनपुट दें और हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, लेकिन कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह से नहीं है। कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड मुख्तस होता है। सो आप जो भी कोई काम कर रहे हो आपको पूरी मेहनत से, लगन से उस काम को करते चले जाना है, एंड आफ्टर सम टाइम एक रैंडम डे आएगा जिस दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आपको रियलाइज़ होगा कि जो सब स्ट्रगल आपने की थी फाइनली वो वर्थ इट थी। वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, सो जो चीज़ आपको इंस्टेंटली मिल जाती है वो कभी भी आपके साथ देर पा नहीं रहती। सो जो पौधा एक दिन में बड़ा हो जाता है वो एक छोटे से तूफान से दोबारा से उखड़ जाता है, लेकिन जो दरख्त सालों साल लेता है खुद को ग्रो करने में वो फिर किसी चीज़ से भी नहीं डरता, ना ही उसे बारिश रुक सकती है, ना सर्दी और ना गर्मी, क्योंकि उसके अंदर इतनी विल पावर होती है कि वो आने वाले हर तूफान का सामना कर सकता है। अगर आपकी कामयाबी में वक्त लग रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आप कुछ इस तरह से ग्रो होंगे कि आपको बिल्कुल भी किसी तूफान का डर नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, आपका सफ़र बिल्कुल खूबसूरत और क्लियर होगा। सो मेहनत से लगे रहें, पेशेंस रखें, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लेकर आएगी और फिर जिस दिन आपको रिवार्ड मिलेगा उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस नाम में लगे रहते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनको ऐसा फील होता है कि हमें हमारी मेहनत का आउटपुट नहीं मिल रहा, तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। सो माय लवली डिवास और मेरे सभी लिसनर्स, द फर्स्ट थिंग इज़ कोई भी काम आप करते हो तो उसको ज़रूर थोड़ा वक्त दिया करो और इतना वक्त दिया करो कि वो फाइनली आपको रियलाइज़ करवाए कि वाकई ही आपकी मेहनत रायगान नहीं गई।

सो डियर लिसनर्स, आज के सेगमेंट से हमें दो बातें सीखने को मिली हैं. द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स यू कॉन्ट कंट्रोल, एंड द सेकेंड थिंग इज ट्रस्ट योर टाइमिंग. जिंदगी बहुत हंसी है, इस डर और परेशानी मत गवाइए, खुद पर और अपनी जिंदगी पर पूरा भरोसा रखिए. सो लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी प्यारी सी बात के साथ वक्त हुआ है शो में एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करने का. सो आइए कुछ अच्छा सा ट्रैक सुनते हैं, और ये गाना होगा मेरी पसंद का. सो आप सभी सुनिए और मुझे बताइए कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और इसी तरह के और भी मज़े मज़े के अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप के संग जुड़े रहिए.

इन अवर माइंड्स आर चिकन रेशमी मलाई बोटी। जी हाँ, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जूसी होती है और टेंडर। अगर आप भी आज चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू पार्टी घर में प्लान करें, तो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसकी कंप्लीट रेसिपी। सो आज की हमारी इस रेसिपी यानी कि चिकन रेशमी मलाई बोटी को बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, सबसे पहले तो वो आपसे शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 750 ग्राम्स, और याद रखिएगा कि आपने चिकन यूज़ करना है बोनलेस, और इसे अच्छे से क्यूब्स में कट कर लेना है। द नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज फ्रेश क्रीम या फिर मलाई, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल एंड इट्स टोटली योर चॉइस। सो इसकी कुल क्वांटिटी है 4 टेबल स्पून। साथ ही साथ हमें चाहिए थिक योगर्ट 4 टेबल स्पून, बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चिकन रेशमी मलाई बोटी बहुत ही ज़्यादा जूसी हो, सॉफ्ट हो, टेंडर। सो वो कुछ इसी तरह से होगी जब आप एक थिक बैटर क्रिएट करेंगे। सो आपने योगर्ट लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की जानिब। सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, कच्चा पपीता पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ ही साथ लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ग्रीन पेस्ट। अब ये ग्रीन पेस्ट किस तरह से हमने रेडी करना है, सो उसका भी तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले 1.5 कप हरा धनिया, उसके साथ ही 1.5 कप पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्चें। आपने इन तीनों को ले लेना है, एक अच्छा सब ब्लेंडर की मदद से बना लेना है पेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये पेस्ट ही है आपकी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं द स्टार ऑफ द शो, जो कि हमारी इस रेसिपी को बनाएगा मुनफरिद, डिफरेंट और यमीएस्ट। अब ज़रा बात करते हैं ड्राई स्पाइसेस की, यानी कि स्पाइसेस ही होते हैं जो कि हमें ये चीज़ बताते हैं कि रेसिपी का टेस्ट कैसा है। बिना स्पाइसेस के कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं लग सकती। सो इस रेसिपी में शामिल होगा 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर एंड 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका। सो बेसिकली आपने इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स और मसाले यूज़ किए हैं, ये टोटली आपने यही यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप मसाले चेंज करेंगे तो फिर जायका भी चेंज हो सकता है। सो अब बात कर लेते हैं ब्लेंडिंग और कोटिंग की। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर, और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे कुकिंग ऑयल। सो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल भी, बट आई फील लाइक कि कुकिंग ऑयल ज़्यादा बेस्ट है। सो दे लिसनर्स, ये थे वो सब इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए, एंड आई होप कि आपने सभी नोट कर लिए होंगे। बट इन जस्ट केस कि अगर कुछ मिस हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं, 01157100971 इस पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई पसंदीदा रेसिपी है, या आप चाहते हैं कि आप मुझसे कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊं शो में जो आपको पसंद हो, सो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स। अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सो जब हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस रेसिपी को। सो तब तक के लिए आप इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहें, बंदे रहें, एंड वी विल बी राइट बैक After a very short break.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
4: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
4: पिशावरी डेरा।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप पे। तो लिसनर, जैसा कि मुझे और आपको हो चुका है साथ में तकरीबन एक घंटा से ज़्यादा, सो अब बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है आपका मेरे साथ। सो एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि आज का हमारे जो कोर्ट से वो बेसिकली क्या कह रहे थे उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, ताकि उनको भी कुछ ना कोई मोटिवेशन मिलती रहे। सो हमारे आज के कोर्ट्स ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं देना चाहिए, और सेकंड थिंग इज़ अपने आने वाले वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि राइट टाइम पर हर एक इंसान को उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और जो लोग वक्त से पहले ही चीज़ों को मांगते हैं तो वही अक्सर मायूस रहते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने सभी आप सबसे रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर कर दिए थे, तो अब ज़रा सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। सो बेसिकली ये एक प्यारा सा गाना है जो कि हमारी एक प्यारी सी लिसनर ने मुझे अभी कमर्शियल ब्रेक के दौरान रिकमेंड किया है। सो वो चाहते हैं कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए, सो क्यों नहीं, ज़रूर आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन स्टार्ट करेंगे आज की द स्पाइस किचन रेसिपी का फुल मेथड।

से तो लिसनर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह से धोकर बिल्कुल ड्राई करके रख लेना है। अब बारी आती है हमारे ग्रीन पेस्ट को बनाने की, जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था। सो जो ग्रीन पेस्ट है वो है द शो स्टॉपर, यानी कि मैजिक ऑफ दिस रेसिपी। सो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, साथ ही साथ एक से दो चम्मच पानी, इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि एक अच्छा थिक ग्रीन पेस्ट बन जाए। तो अब हम यूँ करेंगे कि एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें शामिल करेंगे दही, फ्रेश क्रीम, साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, कच्चा पपीता पेस्ट, लेमन जूस और जो हमने क्रीम सॉस तैयार की है उसे। सो इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। फिर इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस, जिसमें सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, भुना ज़ीरा, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, नमक, कॉर्नफ्लावर, ये सब ऐड कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है, जिस सिंपल से दो स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सो इन सभी को ऐड करने के बाद अब आ रही आती है चिकन पीसेस को इसमें कोट करने की। सो अब हमने अपना बैटर रेडी कर लिया है, यानी कि ये वो बैटर है जो कि हमारी इस रेसिपी को बना देगा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। सो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से जो चिकन पीसेस हमने कट करके रखे थे उन्हें वन बाई वन इसमें कोट करते जाएंगे। सो जैसे ही हमारे तमाम तर चिकन पीसेस हो जाएंगे अच्छे से डिप, सो अब हम कम से कम इसे दो से लेकर चार घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि जितने भी स्पाइसेस हैं और जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर रुक जाए, ठहर जाए और जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएँ। सो ये था हमारा स्टेप नंबर वन। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर टू की जानेब। सो स्टेप नंबर टू में मैरिनेट किया हुआ चिकन, जितने भी हमारे पीसेस थे उनको अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है, फ्रिज से निकाल के बाहर रख देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लेंगे एक स्टिक और स्टिक पर आराम से एक स्टिक पर चार से पांच चिकन पीसेस लगा देंगे। फिर पैन या फिर ग्रिल पैन में 2 टेबलस्पून बटर या कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे और बारी बारी करके फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई।

सो अब आई आती है कि हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई और वन बाय वन तमाम दस स्टिक्स को रख देंगे पैन के अंदर। सो जैसे ही एक से दो मिनट हम एक साइड को कुक कर लेंगे तो साथ ही हम साइड को टर्न कर देंगे, ठीक है, ताकि हम दूसरी साइड से भी उसको कुक कर लें। और कुछ इसी तरह से टोटल 12 टू 15 मिनट्स में हमारे जितने भी चिकन पीसेस हैं वो सॉफ्ट, जूसी और लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे।

सो बेसिकली इसी तरह से हमारी ये रेसिपी हो गई तैयार। आखिर में हम क्या करेंगे, कोयले को डायरेक्ट स्टोव पर लाल होने के लिए गर्म कर देंगे। पकी हुई मलाई बोटी वाले पैन को बीच में फॉइल पेपर की छोटी सी टुकड़े रखेंगे, उस पर गर्म कोयला रख देंगे। सो 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल पोर कर लेंगे। इमीडिएटली 3 मिनट्स के लिए पैन को ढक देंगे एंड टड़ा, आपकी गर्मा गर्म जूसी चिकन रेशमी मलाई बोटी हो गई बिल्कुल तैयार। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे हरी चटनी, प्याज का रिंग या गर्मा गर्म पूरी के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस जिसे भी आप ये खिलाएंगे वो ज़रूर आपसे कहेगा कि वाओ ये रेसिपी कितनी ज़्यादा कमाल है। सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट मेन कोर्स, चिकन रेशमी मलाई बोटी। एंड आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे जब मैं अभी आपसे ये शेयर कर रही हूँ तो शेयर करते करते मुझे ये इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है कि दिल कर रहा है कि बस शो को कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए साइड पे और फौरन से इसको खाया जाए, क्योंकि ये वाकई ही बहुत ज़्यादा डिलिशियस है। सो आई होप आप सभी को रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। और इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी या अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया, सो सिंपली 01157100971।

इस तरह की अगर मज़ीद भी आप अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि डीवर डायलॉग में हम उन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद है। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आज ही, क्योंकि ये तो वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं। सो आपको इनके लिए सुपरमार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। सो लिसनर्स, इसी के साथ ही अब शो में शामिल करते हैं एक अदद अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक, और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, एंड देन ट्रैक्स के उस पर फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और बस आपको और मुझे साथ में रह गया है थोड़ा सा ही वक्त, सो कुछ लाइव डिस्कशंस भी करेंगे। सो फिलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक

जी तो लिसनर्स, इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ इस वक्त अभी वक्त हुआ है शो में शो के इख्तिताम का। सो डीवा डायलॉग का ये सफ़र हुआ जाता है ख़त्म। सो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ कि 0115710091। सो ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं आज के शो के हवाले से, अगर है आपका कोई सवाल या फिर आपको रेसिपी में कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो सब आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा आज का शो, और अपना फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर किया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं इस तरह से मुझे मालूम होता है कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, और आप क्या चाहते हैं कि क्या वो तमाम तरह चीज़ें जिनको हम अपने शो का हिस्सा बनाएं। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, www.radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आप रेडियो फजा 97.1 FM के फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में आने वाला है। सो रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी तमाम तर मालूमात के लिए आपको लॉग इन करना होगा इस वेबसाइट को, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, जिसे आप बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जी, शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो माई लवली गर्लीज एंड सभी हमारे जितने भी मेल लिसनर्स हैं, आप सभी से बस इतना ही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में उन तमाम तर चीज़ों को जिन पर आपका इख्तियार नहीं, कभी भी खुद पर हावी मत होने दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मज़ीद खूबसूरत बनाएं, और साथ ही साथ आप कोई भी काम करें, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, एज़ लॉन्ग अगर आप उसमें फोकस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। साथ ही साथ इतना कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उन सभी लोगों का जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते खूबसूरत सा ट्रैक प्ले करती थी हूँ आप सभी के लिए, तो ये ट्रैक सुनते सुनते आप शो को अलविदा करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाज, आप सुन रहे हैं सलराज की वजह के साथ से। प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया हुआ था और मैं बस इसकी फरमाइश तो मैंने सोचा क्यों ना इसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए और साथ साथ आपके साथ गपशप का सिलसिला भी जारी कर लिया, जिनके भी प्रोग्राम में मेरे पास अभी कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है और फरमाइश भी एक और पूरी करनी है। बट मैंने सोचा कि बीच में आ गए आपको अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए ताकि आप ये ना समझे कि सलराज पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं।

सबर बात करने के हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक देता है और हर जख्म में कामयाबी का हक, हर जख्म जो है वो कामयाबी का हक देता है। मतलब ये क्या लाइन है, मतलब कुछ समझ नहीं आई इस लाइन की मुझे। मैं खैर छोड़े, हम बात करते हैं कि खुद को कमज़ोर मत समझे, तुम में बहुत ज़्यादा ताकत है। लेकिन इंसान जो है ना वो अपने आप को कमज़ोर भी खुद ही महसूस करवाता है कि जब वो देख लेना कि दुनिया जो है ना उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, तो वो खुद ब खुद अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। और वो कहते हैं ना कि खुद खाना बना के एक दूसरे के एक अगले बंदे के आगे पेश कर देना, खुद को वो हिसाब हो जाता है। जब हम अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं ना, फिर वो अपनी मर्जी से उसको खींचना शुरू कर देते हैं। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी जरूर होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसे ही कामयाब नहीं हो जाता, कोई ना कोई ऐसी ठोकर जिंदगी में लगी होती है जिससे वह कामयाबी की तरफ जाता है। और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम जो है ना वो कामयाबी होती है। सो कोशिश ये करें कि आपके साथ भी कोई तकलीफ दे हादसा हो जाए, ताकि आप भी जो है कामयाबी की तरफ जाना शुरू कर दें। जो है वो आप जब तक किसी ऐसे मरहले से नहीं गुजर जाएंगे जहाँ पे आपको ये मतलब मैं कहती हूँ कि ठोकर नहीं होती, एक सबक मिलता है ज़िंदगी में, और सबक जब मिल जाता है ना तो इंसान कामयाब होता है। इसी तरह मैंने भी एक बंदे से उम्मीद लगा के रखी हुई है कि वो भी किसी कभी ना कभी ज़िंदगी में कामयाब जरूर होंगे, और वो होंगे ज़ाहिर सी बात है। मैंने अपनी बहुत सी उम्मीदें जो है ना उन पर उनके हाल पे वाबस्ता की हुई है। बट जो है इसलिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की आदत डालें और कामयाबी के लिए तैयार हो जाएं। तो आप देखें कि ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ आपके सामने आई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आई है, तो उसके पीछे उसका हल भी होगा, क्योंकि जब ताला बनता है ना तो उसके साथ चाबी भी बनती है।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलोर आज की सुलसी के साथ। प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आया था ठीक है, ठीक 2 बजे तक। अभी के लिए प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हुई थी और कमर्शियल ब्रेक उस पर ही आपसे मुलाकात। बट जिन्हें लोगों ने आज अरबी फर्ज 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया। आप तमाम नई समातों का प्रोग्राम में शामिल होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। मतलब बिगड़ी जो है प्रोग्राम में एक छोटे सा टॉपिक शामिल करवाते हैं, एक छोटी बड़ी ही प्यारी सी बात प्रोग्राम में शामिल करवाई गई है कि दौलत की असल खूबी ये है कि वो इंसान के पास हमेशा नहीं रहती, और अगर वो रह जाए तो इंसान नहीं रहता। और ये बात वाकई सच है, जिन लोगों के पास बहुत दौलत है वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, और जिनके पास दौलत नहीं है वो लोग सुकून में है। बट उनको पैसों की कमी है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं। बट कोशिश इस चीज़ का ध्यान करें कि रब की ज़ात ने, ऊपर वाले ने आपको किसी एक चीज़ से नहीं नवाजा, तो उसमें कोई उसकी बुरा मतलब उसको ये नहीं है कि यार उसने एक चीज़ें दी तो उससे गिले शुरू कर दिए जाए। नो, गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि आने वाले सही टाइम में वो आपको वो चीज़ दे दी जाए, और दुआ के ज़रिए जो है उस चीज़ को आप पा भी सकते हैं, क्योंकि दुआएं जो है वो आप बहुत कुछ आपको दे सकती हैं। और वो कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। यूँ तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर वो जानता है, वो चाहता है कि उससे मांगा जाए। ये उसकी जो है वो शान है, क्योंकि वो बादशाह है। इसीलिए दिल खोल के उससे मांगिए, दिल खोल के उससे प्रार्थना करें, उसे बताएं अपने मसले जो हैं वो उसके आगे रखें, वो आपके मसले सॉल्व करेगा। ज़िंदगी जिस मुकाम पर हो उसे जो है तस्लीम कर लें आप, और ये भी तस्लीम कर लें कि यहाँ आप हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक पहिए की तरह है जो घूमती घूमती घूमती रहती है। अगर नीचे है तो कल ऊपर आएगी, अगर ऊपर है तो कल नीचे भी आएगी। सो यही दुआ किया करें कि ऊपर वाला जो है वो आप पे इतना करम करें कि आप उसके बंदों के लिए वसीला बने। सो अगर किसी भी तरह की रुकावट आपको किसी भी काम में लगती है, अगर कोई वही बात आ गई, कोई प्लान, कोई गोल अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने इस मंजिल को, इस चीज़ को हासिल करना है, तो उसको आप हासिल करें। रुकावट सिर्फ इम्तिहान है, हौसले से उसको आप पार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी रुकावटें जो हैं वो आती रहती हैं, और वो अच्छी चीज़ मिलने से पहले जो है ना वो ऐसे छोटे मोटे मसले जो हैं वो होते रहते हैं। सो कोशिश ये करें कि हार मत माने। जब आपने हार मान ली ना, तब आप वहाँ पर ही जो है ना वो टिल गए, मतलब स्टिल रुक गए। सो कोशिश ये करें कि हार मत माने। हार मानने वाला इंसान जो है ना वो कामयाब कभी नहीं हो पाता, क्योंकि फिर जब वो ज़िंदगी में कभी किसी भी किसी ना किसी ने मरहले में जाकर ना अगर कोई ऐसी चीज़ उसको हासिल करनी हो जिसको वो सोचे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा जब तक उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ ये चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाता। फिर आपका दिमाग जो है वो पकड़ के नेगेटिव बातें लेकर आता है। खुद को इतना कामयाब करें, खुद को इतना इस लायक इतना बनाएं कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। जब आप दूसरों की मतलब बड़ी फ़ख्र की बात होती है, जब आप किसी ऐसी महफिल में आपका जिक्र किया जाए जहाँ पर आपको कोई जानता भी ना हो, और फिर वहाँ पर आपका जिक्र किया जाए, उसके बाद फिर आपसे मिलने की ख्वाहिशात की जाए, मिलने की चाह की जाए, मतलब अगर किसी ऐसी महफिल में आपका जिक्र हो रहा है और वहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि हाँ यार इस बंदे की सुनने में इतनी अच्छाई है और सुनने में बातें इतनी अच्छी लग रही हैं, तो इससे मिलेंगे तो कैसा फील होगा, इससे मिलेंगे तो क्या होगा। सो अपने आप को इतना ख़ास बना लें कि अगला इंसान जो है ना वो आपको ये ना मतलब बोल पाए कि वो ऐसा है या वो वैसा है। हम किसी को ऐसा वैसा बोल भी नहीं सकते, किसी को बोलने से पहले हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कुछ चीज़ों का ना ख्याल हमें भी करना चाहिए, क्योंकि किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो हमें उसको नुकसान भी नहीं देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इससे पहले ये कोशिश करें कि उस चीज़ के पीछे किसी का नुकसान ना हो। किसी का नुकसान करके आप अपने फ़ायदे की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी किसी चीज़ की कामयाबी नहीं, और वो फ़ायदा भी किसी चीज़ का नहीं है। कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम पे आकर आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा, और हो भी जाता है।
सो किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए, किसी को खुश नहीं देख सकते तो हमें गम भी नहीं देना चाहिए। बट हम किसी को खुश क्यों नहीं देख सकते यार, मतलब अगर अगर किसी इंसान, अगर कोई हमारे सामने इंसान है, पर्सन है, वो खुश है तो हम उसकी खुशी से क्यों जलें, क्योंकि उसने अपनी अपने वक्त के दुख, अपने वक्त के वो बुरा वक्त जो है वो भी उसने अकेले ही काटा था, तो क्या मतलब वो उसका इतना भी हक नहीं है कि यार वो खुशी को भी इंजॉय कर सके। सो किसी को मोहब्बत नहीं दे सकते तो उसे नफरत भी ना करें, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पर मोहब्बत बांटनी पड़े वहाँ पर बांट देनी चाहिए, जहाँ पर मोहब्बत से बात करनी चाहिए वहाँ पर कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपकी आपकी मुस्कुराहट से जो है किसी को किसी भी तरह की छोटी सी खुशी मिली है तो इसमें आपकी कोई मतलब बड़ी वो नहीं है, ये आपकी बल्कि एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है कि आपको याद किया जाएगा कि वो इंसान मेरे लिए हंसता है। और हमें ज़िंदगी में है ना कभी कभार दूसरों के लिए भी खुश रहना पड़ता है, ना कि सिर्फ अपने लिए दुख अपने ही दुख रोने पड़ते हैं। हम किसी का सहारा नहीं बन सकते तो हमें जो है उनसे मदद भी नहीं मांगनी चाहिए, फिर अगर हम मुश्किल टाइम में किसी का सहारा नहीं बनेंगे तो कोई हमारा सहारा भी नहीं बनेगा। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप मुश्किल में उनके साथ नहीं खड़े होंगे फिर भी वो मुश्किल में आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसे कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो आपके साथ मुश्किल टाइम में खड़े होते हैं, हर मुश्किल टाइम में खड़े होते हैं, आपको बुरा अच्छा बुरा सब समझाते हैं, तो उनको संभाल के रखें, क्योंकि ये मौके जो है ये इंसान जो है दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते। सवाल किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बददुआ भी ना दें, बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं इसी बात से एक बात करती हूँ कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना किसी भी किस्म की, तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। सो किसी के लिए दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है, आप दूसरों के लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करेंगे तो आपके लिए भी जो है वो रब की ज़ात जो है वसीला बनाएगी, क्योंकि हमारी सोच जो है ना, सोच जो हमारी है ना वो हमारे मुकद्दर की बुनियाद होती है। सो हमें उसको बुलंद रखना चाहिए। जब आप दूसरों के रास्तों की रुकावट दूर करते जाएंगे ना तो आपकी अपनी मंजिल जो है ना वो आपकी तरफ खुद चल कर आएगी, और फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप जिस चीज़ की तरफ आप जाना भी नहीं चाह रहे थे, जिस तरफ जाने से आपको मुश्किल लग रही थी, जिस तरफ जाते हुए आपको डर लग रहा था, वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद चल कर कैसे आ गई है। इसीलिए आइए, क्योंकि जब हम दूसरों के रास्तों की रुकावट को ख़त्म करते हैं, उनको दूर करते हैं, तब जो है वो ऊपर वाला हम पे भी कृपया करता है, हम पर भी रहम करता है, हमें भी बताता है और हमें समझाता है, हमें सिखाता है, फिर हमें ज़िंदगी के उस मरहले में ले जाता है, उस टाइम में ले जाता है कि जहाँ पर हमें शुक्र अदा करने का मौका दिया जाता है। और ये नहीं कि सिर्फ खुशी में ही शुक्र अदा करना चाहिए, हर जो है टाइम में आपको शुक्र अदा करना चाहिए। उठते बैठते कामयाबी इंसान को बदलती नहीं बल्कि बेनकाब कर देती है। सो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि कामयाब होकर जो है उनका रवैया, उनका एटीट्यूड जो है वो एक अलग ही लेवल में चला जाता है, तो इस चीज़ को जो है वो कम करें, क्योंकि जब हम किसी टाइम में हम भी उस जगह पर थे जहाँ पर आप दूसरे लोग हुआ फील करके देख के ये फील करवाते हैं कि आप तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनसे बड़े हैं। सो कोशिश यही करें कि अगले इंसान का भी ख्याल करें। कामयाब होने के बाद इंसान का जो है ना पता चलता है कि वो दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से चल रहे, किस तरह से चलेगा। सो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे की तरफ देखो। सो अगर आप कामयाब होने के बाद किसी अच्छी पोस्ट पर आ गए हैं, ऊपर वाले के कर्म से आपकी सब कुछ मतलब सेट हो गया, तो आप अगलों को जो है ना ऐसा फील मत करवाएं कि उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। ज़िंदगी को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको पीछे एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि आप ही पीछे कैसे थे और अभी आके जो है आपने ये कामयाबी हासिल की है। सो एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का बहुत बहुत ख्याल करें। बड़ा अभी के लिए जो है ना प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं ताकि आप ये ना बोलें कि सलराज खुद ही बोली जा रही है और हमारी फरमाइशों को पूरा नहीं कर रही। मेरे पास बार बार एक ही ट्रैक साथ जा रहा है कि प्लीज़ प्ले कर दें, प्लीज़ प्ले कर दें, शायद मैं आपको बहुत ही अच्छी नहीं लग रही। अगर नहीं बोलते हुए तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ कि बड़े बीच में जो है ना वो थोड़े ट्रैक भी सुनने चाहिए ना, ताकि आपके मूड को अच्छे से अच्छा बना सके, क्योंकि दिन जो है आज है मंडे, और मंडे के दिन जो है हम इसीलिए आपके मूड को फ्रेश करते हैं, अच्छा करते हैं, ताकि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छे से अच्छा गुजरे।
सवाल कि कोई पैगाम किसी प्यारे का नाम करवाना चाहें या फिर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अपने लिए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का, रेडियो फ़िज़ो को ट्यून करने का प्लस चूज़ करने का, जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। पैसेंजर के कोई गाना प्ले करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, उनकी फरमाइश पर कोई गाना प्ले करवाना चाहें तो वो मुझे बता दीजिएगा। स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर अगेन नोट करवा देती हूँ, 01157100971। नंबर को सेव कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी के लिए प्रोग्राम में छोटी फरमाइश को शामिल करते हैं, हदीका क्यानी की आवाज़ को शामिल कर देते हैं। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। भला ये सुनते हैं हदीका क्यानी की इस खूबसूरत आवाज को, इसके सवार रहिए आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस खूबसूरत आवाज के उस पार।

0: तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ अभी जो है ना मेरा दिल कुछ इस तरह से हुआ कि मेरा दिल कर कि सूफी ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, बट मेरे पास फरमाइश भी आ गई एक और ट्रैक की, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको भी प्रोग्राम में प्ले कर दिया जाए। अभी जो है ना मेरे पास समय नहीं है क्योंकि उस चीज़ को प्ले करने का फरमाइश भी ना पूरी और मज़ा भी ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है। मे भी शायद वाली बात है कि प्रोग्राम में अगर उसको शामिल कर दूं तो वो उस तरह से जो है चल पड़े और आपको पसंद भी आ जाए।
1: तू तड़ तड़ बन गया है दिल दी तेनु सा विच परो।
0: सो वेल आइए इस ट्रैक के उस बारे की आपसे मुलाकात, एक छोटी सी चुनमुन से कमर्शियल ब्रेक भी रहेगी हमारे साथ साथ। अभी तक स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। मिलते हैं चंद मिनट के बाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरराज की सबलसी के साथ। प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आरोप कमर्शियल ब्रेक पर रही है आपसे मुलाकात। बिल्कुल ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझे बतानी होती है, एहसास जज्बात और बहुत सी ऐसी चंद राज बात राज वाली बातें जो आपने वीकेंड पे मेरे लिए संभाल के रखी होती हैं। और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किया था और सो सॉरी क्योंकि एक लिरिक्स जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया, तो अभी जो है प्रोग्राम एक मनुष्य बेकार हो चुकी थी। बट कोई बात नहीं, खैर है, अभी जो है वो प्रोग्राम में एक छोटा सा पैगाम में एक छोटी खूबसूरती बात प्रोग्राम में शामिल करवाते हैं। अपना वक़ार ख़त्म करना हो तो अपनी तारीफ खुद करना शुरू कर दें और दूसरों की बातों में टांग ना अड़ाएं। सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे जो आजकल के दौर में ना एक दूसरे की बातों में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है। फिर कहा जाता है कि अगर आपको अपनी एक टांग नहीं पसंद तो फिर आप दूसरों के मामले में टांग अड़ा सकते हैं। बिन बुलाए मेहमान बन जाया करो, ये मुझे कोई अच्छी नहीं लगी बात। बगैर सोचे समझे बात किया करो। नो, बगैर सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए। ना जाने आपने प्रोग्राम में क्या शामिल करवा दिया, लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात वाकई है, जब आप किसी को रुसवा करेंगे तो आप बेशक साथ कमरे पीछे क्यों ना बैठे हों, आपको भी वहाँ पर रुसवा कर दिया जाएगा। खैर, आपने जो प्रोग्राम में बात शामिल करवाई है, मुझे इस बात का खासी समझ नहीं आई मुझे, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको अकेले में बैठ के ना इसको समझूँ। बट एक और खूबसूरत सा पैगाम मैं अपने दूसरे प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहती हूँ। मेरी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपके साथ कामयाबी के हवाले से होती है कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। सवाल, आप दुनिया के डर से अपने फैसले तो मत बदलें, लेकिन दुनिया को अपने फैसलों से बदल सकते हैं जब आप अपने आप में ये हिम्मत रखते हैं, अपने आप में ये जज्बा रखते हैं कि आप किसी भी तरह से जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी जगह से आप नाकाम होकर वापस नहीं आ सकते, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं अपने फैसलों से। मैंने कहीं भी पढ़ा था कि मतलब किसी मूवी में छोटा सा शॉर्ट देखा था, जब मतलब वो कुछ इस तरह से था कि जब हम उसका अगर मैं अपनी तरफ से बताई दूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि जब हम कामयाबी की तरफ जाते हैं तो कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपको ये कहता होगा कि नहीं, आप इस जगह पे नहीं जा सकते, इस जगह को नहीं फॉलो कर सकते। तो आप तब ये कर जब आप किसी कामयाबी की तरफ जब जाते हैं तो आप दिमाग में पहले से ये चीज़ सोच लेते हैं कि अगर कोई आपको इंसान ऐसा बोले कि आप इस चीज़ को नहीं कैरी कर सकते, आप इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, आप इस चीज़ तरफ नहीं जा सकते, तो फिर जो है ना वो एक जवाब आगे से आता है कि अभी से ही सोच लें कि हमें नहीं हारना है। सो हारना शारना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हार जो है ना वो ज़िंदगी में आपको एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास आप भी रही ना तो उसको एक्सेप्ट आपने करना ही नहीं है। बट कोशिश ये करनी है कि आप जब किसी भी तरह का किसी भी कामयाबी को हासिल कर लेना, किसी मुकाम को हासिल कर लेना, तो अपने अंदर गरूर नहीं लेके आना। अरूज मिलने पर इंसान खुदा बन जाए, इसीलिए खुदा ने जवाल रखा है।

अब जैसे देखा जाए कि किसान होता है तो वो मिट्टी में बीज लगाता है, मिट्टी नरम करता है, बीज डालता है, पानी देता है और फिर पौधे के इंतज़ार में खड़ा हो जाता है।

सुवर फूलों को पौधों से ज़बरदस्ती खींच कर नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए जो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, खामोशी एहतियात करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बीज को बोने के बाद उसको पानी भी देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा बीज मत बोएं, किसी के दिल में ऐसा बीज मत बोएं जिसको पानी ना दे सके। बट बताने का मकसद यह है कि जब आप किसी जगह पर किसी बीज को बो देते हैं तो वो अचानक से नहीं आ जाता, उसको टाइम लगता है, और टाइम जब वो लगता है तो फिर वो एक अलग ही रूप में निकलता है। वो कहते हैं ना, इंतज़ार के बाद जो चीज़ मिले ना उसका एक अलग से ही मज़ा होता है। सो इसीलिए हम जब किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो किसी चीज़ की तरफ जाते हैं तो हमें वो चीज़ फ़ौरन से नहीं मिल जाती। इसी तरह जो है ना, पहले चीज़ को बोया जाता है, फिर उसके बाद उस चीज़ को हासिल किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें जो है फिर वो आना शुरू हो जाती हैं। सो ये इस चीज़ को दिमाग में बिठाएं कि कोई भी चीज़ है ना वो फ़ौरन से नहीं मिलती, बहुत सी जगह पे इंतज़ार भी करना पड़ता है। सर अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल कर देते हैं, और इस ट्रैक के इस बार रहती है आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फजन 7.1 FM एंड ऐप। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, साथ हमारा रहेगा ठीक 2 बजे तक।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से कुछ आमदीद करते हैं तमाम संतरी समातों को रेडियो 97.1 FM के राज स्टूडियो से। प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं। मेरे पास फरमाइश कुछ इस तरह से आ गई थी कि मुझे इनको शामिल करना पड़ा। आई डोंट नो इस सिंगर का नाम क्या है, बट मुझे मेरे पास इनकी फरमाइश आई थी तो मैंने फिर इसका एक छोटा सा मैच भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया। सोलो जी के साथ साथ अभी जो है वो एक और छोटी सी फरमाइश को पूरा करते हैं और फिर इसके इस बार मेरा तो मैं हार लूँगी। छोटी सी छोटी मोटी सी कमर्शियल ब्रेक। सो स्टेडियम वजन 7.1 FM एंड मिलते हैं इस ट्रैक और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस बार।

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम एंड 7680 ऑन संडे 2nd अगस्त 2026 फ्रॉम 10 AM टू 2 PM। मजीद मालूम

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाज अपने स्लोड आज की जरूरत के साथ साथ अभी जो है वो प्रोग्राम में एक चर्चिक मशबर ख्याल हो चुकी थी। एक मशबर का सफारी आपसे मुलाकात अभी जो है वक्त समय हुआ जाता है मेरा आपके दरमियान अगले से लास्ट सेगमेंट का वो मैंने रखा होता है पहला और लास्ट सेगमेंट यानी कि म्यूज़िक का, क्योंकि बाकी में तो मैं आपकी आपसे बातें वगैरह करती रहती हूँ बाकी टाइम में। सो उस तरह फिर ट्रैक पे करने के मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अभी मेरे पास जो है एक बड़ी खूबसूरत फरमाइशें मौजूद हैं। सो आइए प्रोग्राम में इसको शामिल करते हैं, उसके सफारी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून 7.1 FM एंड ऐप को ट्रैक किसी पैरों को डेडिकेट करवाना चाहें तो लाजमी करवाइएगा। नंबर आपको अगेन नोट करवा देती हूँ 1157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। वेल अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक और खूबसूरत आवाज़ को शामिल करते हैं, एक और खूबसूरत फरमाइश को शामिल करते हैं, इसके सवारी की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून 7.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। बोल उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको अपनी आवाज़ सुनाने के बाद एक और छोटा सा ट्रैक शामिल कर दिया जाए प्रोग्राम में। एक और फरमाइश को अपने आपके अपने दरमियान शामिल कर देते हैं। मूवी का नाम क्या था, आई डोंट नो, अब याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ट्रैक का नाम आप ज़रूर सुनिएगा, आपको याद भी आएगा इसको सुनने के बाद। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक किस बारी की आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड दैट।

0: वो उसी के साथ साथ अभी जो है वो मेरे पास प्रोग्राम में एक पंजाबी ट्रैक की फरमाइश आ पहुंची है, चल मिले नू चलिए। सो वेल आइए इस ट्रैक को सुनते हैं, इसको इस पार करते हैं आपसे मुलाकात। साथ दीजिए का, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।
1: बापू नू कह दी कम है करते सारे ते हुण चलिया मेले।
2: अज ते मेले च मेले
3: हाय बंदा
4: किथे इक ते डरदी बहुत है यार
5: मिर्जे ककरा तू बजदा फिरदा डरदी हो है।
6: ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ ਕੋਈ ਆ ਜੂਗਾ
7: ਲੱਡੂ ਦੇ ਖਾ ਗਈ ਜਬੜ ਜਬੜ ਹੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ
8: ਆ

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक ट्रैक शामिल किया था, उसके बाद एक और फरमाइश आन पहुँची, लेकिन अभी जो है वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0777-021-07।

0: 9-32
1: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8, 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
6: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
5: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
6: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
5: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
4: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard Lenton Nottingham NG72ET
4: Peshawari Dera.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy.

0: Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
4: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
0: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।
5: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ

जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं लुटके वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और हम आपके साथ साथ हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मौसम अली भी आपके साथ हैं। और हनी सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया, लग दी जी मैनू अंबरा दी क्वीन, देसी कलाकार, खूबसूरत सा ट्रैक लव दोस्त। तो इस ट्रैक उस पार जब वापस लोड कराए हैं तो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं और आप हमारे साथ साथ रहने वाले हैं। आपके प्रोग्राम में मैसेजेस जरूर शामिल करेंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और

0: जो अब उनकी जिंदगी में उनके साथ शामिल हो चुके हैं, और उन तमाम लोगों को भुलाया जाए जो उनसे बहुत दूर रह चुके हैं। खैर मौजूद भूल तो हम नहीं सकते उनको, लेकिन ये वक्त की नज़ाकत है कि हमें उन्हें थोड़ा सा खुद से दूर रखना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें, ऐसे ही
1: जी बिल्कुल। हमें अपनी हम परदेसी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनके उनको सुबह काम, दिन को काम, शाम को काम, और रात को आना है, सो जाना है। हो सकता है कुछ तो डेली बात होती है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो वीक वीक बात भी नहीं करते,
0: ऐसे ही है। और आप वीक की बात करते हैं भाई, लोग महीना महीना बात नहीं करते,
1: तो इसमें फिर वो जो उनकी फैमिली उनके लिए, मुझे लगता है कि रूटीन में फैमिली उनके लिए वही होते हैं जो उनके साथ रूममेट्स होते हैं, या वो होते हैं जो हम जब सिग्नल्स पर खड़े होते हैं तो, या किसी होटल पे वगैरह खाना खाने के लिए रुकते हैं, या अपनी जो भी कंपनीज में हम जॉब कर रहे हैं, या जो भी जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं उनके लिए जो रेगुलर पैसेंजर है उनके, वो होते हैं उनकी फैमिलीज। हम उनसे अपने दुख सुख वो बता देते हैं हमें, हम उनका हाल वाल पूछ लेते हैं। इसी तरह जो इस वक्त कह लें कि घर की याद की बात करें, तो घर में हम इस तरह कहेंगे कि बंदा जब भी, फिर भी जब हम फोन की गैलरी ओपन करता है तो जब भी कोई भी पुरानी तस्वीर या कोई भी ऐसी चीज बंदे के सामने आ जाए तो बंदे को एकदम से वो चीज भूल जाती है कि यार वो भी मेरी फैमिली थी।
0: हकीकत ऐसा ही होता है, और हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, खासतौर पर जो प्रदेश में इस वक्त हमें देख या फिर सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहेंगे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना जी, हम आपके रूममेट तो नहीं है, लेकिन आपके फिलहाल कुछ वक्त के लिए हम आपका साथ जरूर दे सकते हैं। अभी हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती कमर्शियल ब्रेक है, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे फिर हम मजीद इस चीज पर डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है कि मौसम अभी तो बहुत कुछ बाकी है, थोड़े से सेंटिमेंटल टाइप चीज होने वाली है।
1: ये तो है, सेंटिमेंटल टाइप चीज तो है, पर कोशिश करेंगे कि आपको सेंटी ना होने दें, साथ साथ म्यूजिक भी चलाएं।
2: इट्स कमर्शियल टाइम।
3: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइको एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना, चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंगम NG7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
4: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
5: What happened? You look very happy.
6: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
5: Congratulations. That was very quick.
6: I was very lucky. I used the local visa experts.
5: Who helped you with the application?
6: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
5: Where is AMH solicitors based?
6: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
5: Brilliant. I will contact them to help my family.
6: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: जब जरूरत हो तो हल्का सा इशारा करना। आर्य जी, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके लौट के वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं और हम भी इसी शर्त पर आपके साथ साथ हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं। आप सुन रहे हैं जना फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव जोन, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोजम अली। और हम बात क्या कर रहे थे मोजम?
1: बात कर रहे थे परदेश पे और परदेश की लाइफ पे।
0: आपको जी परदेश की जिंदगी जो है वो काफी तरीन, काफी नहीं बल्कि काफी से भी बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन होती है, और इसमें सर्वाइव करना शायद सबके बस की बात नहीं होती। मैंने बहुत से ऐसे अपने दोस्त भी देखे हैं जो दिल छोड़ जाते हैं और वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं, खास तौर पर साउथ एशियंस में। और हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियन दोस्त भाई ऐसे बहुत से हैं जो बहुत कम वक्त निकालते हैं और फिर अपनों की याद में वापस चले जाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप तमाम लिसनर से भी और सामईन से भी और नाजरीन से भी। सवाल बहुत ही आसान सा है मगर जरा सोच के जवाब दीजिएगा। बल्कि मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब के लिए भी हमारे पास डेढ़ घंटा पड़ा हुआ है, कर लेंगे सवाल जवाब। मौसम के पास ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं मौसम को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा।
1: नहीं, आप कंटिन्यू रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम
0: मसले वाली बात नहीं, मैं बात पूछ लूंगा थानू।
1: बस ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात है ना।
0: ओके जी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप फजा 97.1 एफएम के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर या एप स्टोर पे, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। या आप ट्रांसमिशन के थ्रू हमें सुनना चाहते हैं नॉटिंघम के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आप रहते हैं तो आप हमें सुन सकते हैं ट्रांसमिशन के थ्रू। इसके अलावा अगर आप हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप हमें फजा डैब पर भी ट्यून कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मजीद इसको आगे लेकर चलेंगे। और प्रदेश में रहने वाला हर इंसान जो है वो एक बात जरूर समझता है और वो बात होती है वक्त की, कि वक्त यहाँ बहुत तेजी से गुजरता है। सुबह काम, शाम काम और फिर अगले दिन वही मामूल, कभी कभी पूरा हफ्ता गुजर जाता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता। हाँ ये है कि फिर अचानक किसी दिन फ़ोन की गैलरी खुलती है और अपने शहर की कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है, या कभी सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए कभी ऐसा हो जाता है कि आपका अपना देश, आपके अपना शहर, आपकी अपनी गली मोहल्ला जब आपके सामने आ जाता है तो बस वो एक तस्वीर जो होती है सैकड़ों यादें ताज़ा कर देती है। वही अपना घर, अपनी गली, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, अम्मी के हाथ की चाय और अब्बू की वो तमाम तर नसीहतें जो हमें उस वक्त पे तो शायद बहुत बुरी लग रही होती हैं जब अब्बा जी कर रहे होते हैं, जो उस वक्त शायद अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं जी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा याद आती है दोस्तों, परदेश हमें मजबूत ज़रूर बनाता है लेकिन ये भी सिखाता है कि अपने लोगों की कदर हमेशा करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर चीज़ कर लेते हैं, कदर नहीं करते। वो आजकल ना मुझमें एक रील बड़ी वायरल हो रही है, मैं वो देख रहा था। एक बंदा रेस्टोरेंट पर जाता है और जाके वेटर से कहता है कि वेटर उससे पूछता है कि सर ऑर्डर प्लीज़, तो कहता है यार एक प्लेट पुरानी यादें ले आओ। तो वो आगे से कहते हैं सर वो तो ख़त्म हो गई हैं, पछतावा बड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, वो ले आऊँ। और वो मेरे ख्याल चंद एक सेकंड की वो सिर्फ वीडियो है और उसको देखकर एहसास होता है कि यार ओखा ये काम है।
1: इसी तरह है कि जिस तरह हर परदेसी की यही एक दिल की आवाज़ है, और ये सिर्फ एक रील नहीं है, खैर मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, आपकी बात सुन के ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस कदर उसको वो परदेश में अपनों की याद ता रही होगी।
0: ऑफ कोर्स डैड। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने देश में रहकर अपने घर वालों के साथ रहकर भी परदेसी होते हैं, लाइक यू। ऐसा होता है जी, कभी कभी हम जो है ना वो अपने घर वालों के साथ रहकर भी परदेसी होते हैं, चाहे चंद लम्हात के लिए हो। कुछ चीज़ें, कुछ यादें हमें बड़ा दूर ले जाती हैं। ख़ास तौर पे वो क्या था, वो यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो कुछ यादें माजी भी ऐसा हमारा होता है कि हमें कभी कभार घर बैठे भी लोगों से बड़ा दूर ले जाता है। लेकिन खैर, ये सारी बातें तो मौज़ूम हम ज़रूर करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। मैं सोच रहा हूँ कि अपने तमाम लिसनर्स के लिए साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी वो जो है वो होना चाहिए, गाने शाने भी साथ साथ चलने चाहिए, ताकि वो लोग सिर्फ हमारी बातें सुन के बोर ना हो जाएं, बल्कि वो साथ साथ प्रोग्राम को इंजॉय भी करें। तो मेरे पास एक और बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है और उसको मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और ये ट्रैक उन तमाम तर समातों की नज़र जिन की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, थोड़ा सा पुराना है, ओल्डी गोल्डी है, लेकिन यकीन करें कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये भी मैं मौज़म की तरफ फेंकता हूँ, मौज़म के नाम बल्कि करता हूँ। लीजिए जनाब, इंजॉय कीजिए कि इस खूबसूरत सी आवाज़ को। ऐश्वर्या राय ने बड़ी खूबसूरत सी इस गाने पे जो है वो डांस किया है, बड़ा खूबसूरत सा। आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप सुन सकते हैं, बल्कि अगर आप देखना चाहें तो आपके पास तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल बड़ी खूबसूरत सा ये ट्रैक, इंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड
1: आई एम योर होस्ट मौज़म अली।

जनाब हम बिल्कुल भी पूरा पूरा गाना शामिल नहीं करने वाले, और उसकी मेन वजह ये है कि आज मौसम के पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए। अच्छा मौसम, पंजाबी में ना एक बात कहावत है, एक बड़ी मशहूर, कहते हैं कि पानी हमेशा नीवे पासे जाता है। साडा जिते बस चलते ना अभी उदे पा देने होने। अगर दोस्तों प्रदेश की जिंदगी सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं जो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, कभी कभी जब हम नॉटिंघम, बर्मिंघम या लंदन की सड़कों से गुजरते हैं तो कुछ ऐसे चेहरे भी नजर में आते हैं जिनके पास घर नहीं होता। और एक बड़े प्यारे से दोस्त ने कमेंट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि होमलेस लोगों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, तो बस ऐसे ही आपकी बात से मुझे याद आया तो सोचे इसको भी प्रोग्राम में शामिल कर ही देते। हालांकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इस चीज़ पर, होमलेस लोगों के बारे में बात करने पर, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप खुद उस कंडीशन से गुजरे होते हैं, तो यकीन करें आपको बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है इस चीज़ से। अब वही तमाम तर बातें यादें जब आपके सामने आती हैं तो आप वाकई ही सेंटी हो जाते हैं, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे तमाम लिसनर्स और मेरे तमाम नाजरीन जो हैं वो इस चीज़ को लेके इमोशनल हों, क्योंकि मकसद एंटरटेनमेंट होता है, लोग इंजॉय करना चाहते हैं, और उस इंजॉयमेंट में जब इस तरह की सेंटी चीज़ें आ जाएं तो फिर शक्ल जो है मौसम जैसी बन जाती है। सॉरी मौसम, प्लीज़ माइंड, नहीं डोंट माइंड। खैर, तो हम बात कर रहे थे जी होमलेस लोगों के बारे में, जिनके पास घर होता है ना उनका कोई ना कोई इंतज़ार करता है, लेकिन जिनके पास घर नहीं होता ना उनका कोई इंतज़ार नहीं होता। वो क्या था कि हो फिक्र देर सवेर की, वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर के हो फिक्र देर सवेर की, तो वही वाला हिसाब

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: सलासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

वेलजी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं फजा 97.1 FM एंड डैब के प्लेटफॉर्म से लाइव फ्रॉम नॉटिंघम यूके। और हम सुन रहे थे नेहा कक्कर को, और साथ साथ बातचीत हो रही थी कि परदेसियों भाइयों पे। और मुझे लगता है कि उस्मान आप ना अभी हमारे जो परदेसी भाई जो ड्राइवर हैं उनको कहना भूल गए, क्योंकि ये पीक टाइम होता है ड्राइविंग का, और है कुछ तो उम्मीद है कुछ तो घर पहुंच गए होंगे और कुछ अभी भी ड्राइविंग कर रहे होंगे। तो ड्राइवर दोस्तों, मुझे आपकी भी हाज़िरी चाहिए और आपका भी होने का एहसास मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप भी हमें अपने मैसेजेस के ज़रिए अपने होने का एहसास दें, और अपने कोई भी पैगाम, अपना कोई भी अपना जो जवाब है जो हमने सवाल किया परदेसियों पे, वो उसका जवाब या कोई भी ऐसी कोई किसी के लिए कोई मैसेज या कोई बात जो आप करना चाहें, जो हम आप चाहें कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी कोई बात कहें, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। करने का तरीका वही पुराना जो इस वक्त नए ड्राइवर दोस्त मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप नंबर है 01 1 5 7 1 0 0 9 7 1। यहाँ पे अपना नाम और अपने प्यारे शहर का नाम और प्यारा सा पैगाम आप भेज सकते हैं। कोई गाने की भी फरमाइश हो तो पूरी की जा सकती है। जो लोग टैक्सी चला रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे टैक्सी चलाते हुए सुन रहे हैं तो हैव अ सेफ ड्राइव, और आपके साथ आपकी और भी जाने मौजूद हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इतनी की ड्राइव कह रहे हैं कि आपके लिए इजी हो और आपके जो चाहने वाले भी उनके लिए भी इजी हो। और खैर साथ साथ गाने भी चलते रहेंगे।

अच्छा जी, स्पेशल सॉन्ग्स सिर्फ उन लोगों के लिए जो पंजाबी जानते हैं और पंजाबी लोग जो मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली, और उनके लिए कुछ गाने, आप प्यारे प्यारे गाने और एनर्जेटिक गाने कुछ लेकर आए हैं हम। अच्छा जी, करण औजला किस किस को पसंद है ये ज़रूर बताइएगा। और करण औजला अक्सर ड्राइविंग करने वालों की गाड़ियों पे लगा होता है। सुनते हैं जी करण औजला का सफर गाना, और ये काफ़ी सारे बंदों के मैं कहता हूँ कि लाइफ स्टोरी बता दिया इसने।

0: वो कहते हैं कि हर गोली में मरने वाले का नाम लिखा होता है। ये बात और है कि वो नाम लिखने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मेरे हाथ में।
1: It's great for art, emotions to give me the art with the fine embrace.

और अर्जुना वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लोड के वापस से उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ बड़ी खूबसूरत सा मैशअप आप एंजॉय कर रहे थे और ये मैशअप स्पेशली जो है वो मौसम ने शामिल किया था हमारे जितने भी टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं उनके नाम। और अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए प्रोग्राम में, हमारा और आपका साथ जो है वो बड़ा कम सा रह गया, तो जितना सा रह गया है इस साथ को मजीद खूबसूरत अभी भी आप बना सकते हैं। और वो किस तरह बना सकते हैं, सिंपल सा तरीका है जी, आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे जो आपका डायल पैटर्न जहाँ पे आप नंबर लिखते हैं जाके वहाँ पर जाकर आपने नंबर नोट करना है और उस नंबर को सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर एक प्यारा सा पैगाम अपने नाम के साथ लिखकर भेज देना है। और हवा के दोष पर लहराता गुनगुनाता सन सन्नाता हो आपका पैगाम जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, हजूर सुनते हुए तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र हो जाएगा। सो आर यू वेटिंग, जल्दी से मोबाइल उठाइए और नोट कीजिएगा नंबर, द नंबर इज 01157100971। इस नंबर को सेव कीजिए और फिर व्हाट्सएप पर जाकर अपना नाम, जगह का नाम, प्यारा सा पैगाम जिसमें कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही आप मुझ तक पहुंचाएंगे सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर कर दूंगा। फिलहाल ये खूबसूरत सी आवाज़ सुनिए आप, इसके उस पार एक छोटी सी प्यारी सी चुनु मुनु सी कमर्शियल ब्रेक होगी, कमर्शियल ब्रेक के उस पार जब लोड कराएंगे फिर करेंगे मजीद प्रोग्राम में गपशप, तो रहिएगा हमारे साथ साथ। हम ये होस्ट उस्मान खान, यू आर लिसनिंग फॉर द 97.01 FM एंड प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और मैं
5: इट्स कमर्शियल टाइम।
6: ओकाना चाय की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
7: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
6: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए, क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
6: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
6: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
7: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
6: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
8: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
7: Pishavri Dera.
9: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
8: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodpro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Carefire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Carefire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: Music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station. That plays
12: foot tapping music.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
14: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

इस धरती पर राज करे है पैसा, दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा, अब ये बात समझ में आई तू भी अपने जैसा, पैसा पैसा पैसा पैसा पैसा पैसा पैसा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669।

0: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
3: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
6: hayatweddings.co.uk।
7: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
0: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
0: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
4: You are listening 97.1 FM.